अधिक स्वरोजगार में सर्वपूर्ण योगदान उत्पादन को अवस्था चुनौती तथा बजारीकरण का विषय में अनुगमन बनी कार्यालय प्रमुख कमला अधिकारी ने जानकारी दी है। अनुगमन का क्रम में पुलगन नगर पालिका वड़ा नंबर 6 में रहे सोलह महिला विदेशी सहकारी संस्था द्वारा संचालित दिशा उत्पादन केन्द्र बनवाल गौपालिका हाथ में रहे सर्व किसान कृषि सहकारी संस्था द्वारा संचालित पालिका कस्टम आईरिंग सेंटर बलियाताल गौपालिका 6 में रहे तोरी मिल तथा बलियाताल गौपालिका 4 बुढ़ा में रहे रही खाने वाली प्रवर्तन कार्यक्रम अंतर्गत संचालित स्थानीय बंगुर प्रवर्तन कार्यक्रम को अनुगमन कर एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यालय यांत्रिकरण कार्यक्रम तथा तरकारी प्रबंधन कार्यक्रम अंतर्गत 50% अनुदान उपलब्ध कराउँदै आएको छ। त्यसै गरी लक्षित वर्ग अन्तर्गत दलित समुदाय पार्टी समुदाय कुशल सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत तथा रेखा नेपाली प्रवर्धन अन्तर्गत स्थानीय प्रमुख प्रवर्धन कार्यक्रम 50% अनुदान

इस वर्ष 8.50 क्विंटल धान खरीद गरी बजारी धान खरीद तथा 8.90 क्विंटल गहुँ खरीद गरी गोदाम में भंडारण गरेको सहकारी का मुख्य व्यवस्थापक सूरज नेपाली ने जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार थालीका कस्टम हायरिंग सेन्टरले किसानले बजारीकरण मूल्य भन्दा 20% कम खरीदमा

0: তখনই সন্তুলিত খানা খাই, ব্যায়াম শব্দ করি। তোমরা তার নদীর মাঝে দূরে রহি, তোমরা তোমার নিয়োজন করি। আজ দিনের কাজিক জীবন যা নিশানার মধ্যে বাঁচি সুস্থ জীবন অপনাই। রেডিও গোপালের সঙ্গ সহকারী হোক স্বাস্থ্যকারী পর্যাসী জনৈক পূজারী সন্দেশ। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुसार नेपाल 30% वयस्क जनसंख्या उच्च रक्तचाप को जोखिम में छन्। प्रसूतित तथा तैयारी खाना, जंक फूड तथा डिब्बा का खाना में सोडियम धीरे हुए हुआ मोटू रोग को जोखिम बढ़ाने गर्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एवटा व्यक्ति दैनिक 5 ग्राम नून सेवन कर उपयुक्त होने सलाह दिया।
1: नियमित रूप में हिड़ शारीरिक व्यायाम ने मोटू स्वस्थ बना मदद कर
0: सन्तुलित भोजन, पर्याप्त निन्द्रा, सकारात्मक सोच एवं चिन्ता र तनावबाट मुक्त रहँदा मुटु रोगबाट बच्न सकिन्छ।
1: 40% कटेपछि नियमित स्वास्थ्य जाँच गरौ।
0: चिसो पदार्थ, माछा मासु कम खाऊ। खानामा सागपात र फलफुल खाऊ।
1: मद्यपान र धूम्रपान सेवन नगरौ।
0: स्वस्थ रहौ, सुखमय जीवन बिताउ।
2: रेडियो द्वारा जनैको जारी सन्देश।

ये पाठशाला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय एपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केंद्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल डब्ल्यूडब्ल्यूएफ नेपालका साथै वित्तीय पूर्णला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सरकारांश अनुसन्धान केन्द्र सङ्गठनको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेसनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स

आगे जीवन खत्म हुई संतरी खाना खाई व्यायाम शब्द करी धूम्रपान मदिरा मजे दूर रही नियंत्रण करी आज निर्णय कार्य जीवन अजरा निशा मारवा मजे बाजी स्वस्थ जीवन अपनाई।

0: 40 प्रश्न कटेपछि नियमित स्वास्थ्य जाँच गरौँ।
1: चिनो पदार्थ, माछा मासु कम खाऊ। खानामा सागपात र फलफुल खाऊ।
0: मद्यपान र धुम्रपान सेवन नगरौँ।
1: स्वस्थ रहौ, सुखमय जीवन बिताउ।
2: रेडियो कुरा एफएमद्वारा जनहितकारी सन्देश।

0: और समाधान न सुनी। समाधान को पड़े तो अच्छा हो जाएगी, याद कर दिया हरे कुमार समझा बोले बेटे को बाबा
1: हम समस्या समाधान होगी।
2: Peace.

जीवन खत्म हुई संतरी खाना खाई व्यायाम शब्द करी धूमपान मदिरा में सेतु न रही तर भलन नियंत्रण करी आज निर्णय कांडी जीवन हजार मुसलमान रोग से पाही स्वस्थ जीवन अपनाई रेडियो गुरुवार को सहकार्य स्वास्थ्य कार्य में प्रत्याशी जनहित मदारी संदेश

जयंत वर्मा रेडियो गोलपारा एफएम का मौसम बुलेटिन में स्वागत है। मैं बिंद चौधरी। आज बर्दिया में दिनभर पछिल्ला बटा जल तथा मौसम विज्ञान विभाग लुम्बिनी 35 करीब दुई ठाउँमा कडा पानी परेको अनुमान गरिएको छ।

0: प्यार करें मेहमान बता दीजिए
1: अच्छा और आप छठी शाम जा दीजिए अर्जुन तकदीर सिंह दास का मेरे प्रथम पानी पर मकान बढ़िया परिवार का जोखिम बहुत दिनों था उसे दर्शन जंगली जनावर का आक्रमण का पता समेत बहुत नाला तथा जोखिम युक्त क्षेत्र बहुत आवश्यक निकट मौसम को पूर्वानुमान हमें ध्यान में रखा हुआ आवश्यक सड़क के तरफ में सर्वसाधारण अर्जी कई दिखाया मौसम बुलेटिन चित्तांग दुर्बाबा मौसम बुलेटिन देखा जी सुबाती तो समग्र कार्तिक संगठिया गौरी शंकर और मई पिंड कविता भेटो जय दुर्बाबा।

0: साथी को दबाव में होइन आफ्नो सपना को पक्ष में निर्णय गरौं तनाव भए खुला कुरा गरौं समाधान लागू पदार्थ होइन लागू पदार्थ मात्र टाढा बसौं स्वस्थ र उज्यालो भविष्य बजौं
1: रेडियो पूर्वाधार एफएम को सहकारीमा स्वास्थ्य कार्यालय पटियाबाट जनहितमा जारी सञ्चार।

सवा 6 बजे हमारा संदेश में अपना स्वागत का संग्रह बर्दिया से उत्पादित हमारे संदेश बर्दिया का साथ एफएम राजापुर पार्टिका रेडियो प्रतिपुर एफएम कोहलपुर रेडियो भातेमालो जानकी गांव पालिका पार्टी में से प्रसंग प्रसारण की के बाद हमारे संदेश पर प्रकारियों मुक्त मुख्य समाचार का शीर्षक से बार बर्दिया नगर पालिका को कर तथा राजस्व संकलन सेवा तीन बंद महीना लागू औसत सेवा कई सवारी चलेगा स्थान पर लाइसेंस खारिजी को राज्य खारिज

0: सुपर कलर लगना जो कोई ना अनुभव ची कभी ना उपाय में ध्यान दीजिए ना सुपर
1: रक्तार पता मुझे पता था टाइल सापा दाल गुड़ी ग्यारह आरा मच्छी शिकार फल फूल आयरन युक्त खाना नियमित रूप में खाई
0: जंक फूड का उपाधि संतुलित करो खाना रोजी स्वस्थ किशोरी जो स्वस्थ भविष्य का आधार हो रेडियो गुरुबाबा एफएम का सहकार्य में स्वास्थ्य कार्यालय प्रत्याशी जनहित मंत्री सनील
2: बदलाव पसंद पूरा खाना छ महीना पाखा अनिवार्य शुरू करे अनुभव पैदा करें

जी स्वस्थ जीवन निशानारोग सत्य ग्रहण ध्यानी दिनभर जीवन खत्म हुई संतुलित खाना खाई व्यायाम शब्द करी धूम्रपान मदिरा में रही तनाव भरा नियंत्रण करी आज निर्णय तारीख जीवन अथरा निशाना रोग में से बाजी स्वस्थ जीवन अपनाई।

0: रासायनिक मल को नकारात्मक प्रभाव वाले किसान को चेतना पड़ते
1: रासायनिक
0: जो मल को प्रयोग न स्थानीय सरकार को

0: अपने मित्र महाभारत जल से हम खड़ा हो जाए स्वस्थता सुरक्षित परिवार
1: स्वास्थ्य कार्य बढ़िया जनहित में जारी।

मंजरान थे या सही मौसम के जीवन और परिवार के जीवन चली रही थी। फ्रांस अभी केप टाउन के 800 माइल उत्तर मचल जुमान सब्बर नदी की 550 माइल का रास्ता था कि नदी अथवा

आदिवासी पूरा दुनिया अंग्रेजी विचार सभ्यता मान्यता वैश्विक श्रेष्ठता प्राप्त थी। अफ्रीकन संस्कृति में जाना तो कोई चीज नहीं थी। मेरे पीढ़ी का अफ्रीकों को मात्र न भर अहिंद पीढ़ी के युवा में

इस अंतर एक दूसरों को दूर तो सब्जी खरीदियों को कार्य बनाना सरल लगे इसे जब हम उसका स्वरूप मन लगे सिद्धांत को प्राप्त किए अगर ने बड़ा युवक को लगे यो एक सशक्त धार्मिक सिद्धांत थी मेरे लगे उन्हें ईसाई के आकर्षक रूप थे जब मेरे लगे राधा के समान समान मेल कर उन्हीं को निराधा के समान जगत का साधन रूप दिए थे आध्यात्मिक मामला में उनको इस तरह राधा को मजा बड़ी उच्च थी जिसे गाँव की समाधि प्रभावित थी और चौंस पर थी उन्होंने धारणा आदि सांसारिक पदार्थों के सामान्य थी